0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sanche Sunya Fan Studio Time
4: It's 7 AM Bihan ko 7 baje
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोनू दूध को नगर पालिका 5 सोनू खुम्बू

कंपनी भई होशियारिया पुनौनु जोखिम टाने भई वारी पारी झाड़ी बुटिया घास साझ पर्दा घर छोड़ी गाँव घूम जानु।

0: 才华之旅，索路 FM 空荡荡。
1: सोलु एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
2: साइन चेक सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
3: इट्स 9 AM बिहानको 9 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु
2: साइन चेक Sun Sun Check Sun FM Studio Time
3: It's 9 AM
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु

0: पाई सुनुक मुमा सब थोक पाई सा था
1: ए वरा दीदी कहाँ पाई सा
0: मत खुजदा खुजदा थाकी सके हो
1: लसुने बहनी सुनु दुपकुंडा नगरपालिका ओरामा पास में वहीं को शांति स्टोर एंड सप्लाई सुनी त्यहाँ बिजुली का संपूर्ण नया सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में पाई बोर्ड आधुनिक स्मिथ वायरिंग का सामान जे खुजो तही तैयार
0: लो नया सामान पनि पाइने पुरानो सामान पनि मर्मत हुने
1: यो त ढुंगा खोज्दा देउता मिले जस्तै भयो नि दिदी
2: हजुर बिजुली को भरपर्दो सहयात्री शांति स्टोर एण्ड सप्लायर्स सोलू दुतकुंडा नगर पालिका वडा नंबर 5 सल्लेरी सोलू खुम्बु यहां बिजुली का संपूर्ण सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में पाउन का साथ ही नया तथा पुराना सामान मर्मत पनि गरिन्छ थप जानकारी का लागि संपर्क नंबर कुल नारायण श्रेष्ठ 9763-00-5784 विवेक श्रेष्ठ 9862-82-00-00 सुनु दुपकुंडा नगरपालिका 5 सल्लेरी सुनुखुम्बु सड़क प्रयोग ध्यान दिए सड़क सीमा अतिक्रमण नगरों सड़क सीमा में उत्साह एवं स्थायी संरचना निर्माण नगरों सड़क को नाली थल तथा पानी निकास बंद होना नदी सवारी चलाउँदा लेन अनुसार पालना गरौं र गरौं सवारी चलाउँदा ट्राफिक नियम को पालना गरौं सवारी साधन में घुमिएर वा छत में बसेर यात्रा नगरौं सड़क को क्षमता भन्दा बढी भाग प्रयोग नगरौं जेब्रा क्रसिंग मतृ बाटो काट्ने गरौं सड़क को तत्काल मर्मतीमार गर्ने गरौं यात्रा को क्रम में कुनै समस्या भए नजिकको प्रहरीलाई खबर गरौं
3: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कुर्ती प्रदेश द्वारा जनहितमा जारी
4: सन्देश
5: सी कार्यालय को जनहित में जारी संदेश
6: पोषण युक्त खाने कुरा जीवन का रंग पूरा मन माता के तन मन
7: स्वास्थ्य जीवन को आधार हो संतुलित र पोषणयुक्त आहार विशेष गरी गर्भवती महिला सुत्केरी आमा र 5 वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूलाई पोषणयुक्त खाना को विशेष आवश्यकता पर्दछ दैनिक खाना में दाल भात हरियो तरकारी फलफूल दूध तथा अन्य पोषणयुक्त खानेकुरा समावेश गरौं जन्मेको एक घण्टा भित्र शिशुलाई स्तनपान गराऊ 6 महिनासम्म शिशुलाई आमाको दूध मात्र खुवाऊ 6 महिनापछि स्तनपान सँगै उमेर अनुसारको पूरक खानेकुराहरू शुरू गराऊ आइरन भिटामिन ए र जिंक युक्त खानेकुरा नियमित सेवन गराऊ जंक फूड धेरै नुन र अस्वस्थकर खानाबाट टाढा रहौं कुपोषणले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा नकारात्मक असर पार्ने गर्छ त्यसैले हामी सबै मिलेर पोषणयुक्त समाजको निर्माण गरौं
5: जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय

लैंगिक हिंसा भनेको के हो? लैंगिक हिंसा भनेको सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लैंगिक आधारमा कसैप्रति शारीरिक यौनजन्य वा

0: टोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Sony FM. In studio time.
2: It's 8 AM. We have to go 10 minutes.
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुदकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

नमस्कार पूर्वी नेपाल के पहिलो सामुदायिक रेडियो सुनवा एफएम 102 मेगाहर्ज देश का विभिन्न भाग र www.sunwafm.com संसार भरक प्रसारण भईर बिहान 10 बजे सोलू हालसा लिएर आईपुगे म सरस्वती पुरी

आंगन भरनी भई होशियारिया पुनौनु जोखिम टारनी भई वारी पारी झाड़ी बुटियन घास राख्न साँझ पर्दा घर छोड़ी गाँव घुम्न जानु हुन्न बाघ भालु बैरा हाती चितुवा पसे पछि धन जनको क्षति हुन्छ चुपचाप बसे

0: राप्ती इंजीनियरिंग कॉलेज घोराही दांग को विद्यार्थी भर्ना संबंधी सूचना।
1: स्थापना को पहले बैच में इंजीनियरिंग कार्यक्रम तर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ पांचों बैच में गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल ग्रीनविच विश्वविद्यालय लंडन कॉलेज लीडर्स नेपाल द्वारा सम्मानित नेपाल एजुकेशन अवार्ड जापान अस्ट्रेलिया तथा यूएई द्वारा पुरस्कृत लुम्बिनी प्रदेश के उत्कृष्ट यस कॉलेज में बीबीए बीसीए बीई कंप्यूटर र बीई सिविल कार्यक्रम में केही सीट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला।
0: सम्पर्क राप्ती इंजीनियरिंग कॉलेज घोराही दांग
1: फोन नंबर 082-562-601 98578-3990 98578-3184 तीन वर्ष डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग र 18 महीने अनिम कार्यक्रम में कहीं सीट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीले छिटो संपर्क गर्नुहोला।

0: ওই সাথী হেরে নেই কে কত সমাচার আইসা তো আমি তো কি হইল
1: কোথায় কি আইতেস তো হ্যাঁ একটুকে পত্র আসে রোহন সামাজিক সংঘের মামলা একটুকে পত্র অনু পড়ছে তো মিথ্যারে ভ্রামক সূচনা অনুসব স্যার এসে না আছে না এসব জলের নাকি আছে
0: আমি মিথ্যা ভ্রামক মানুষ কি উনিকে চাই
1: তুমি থাকে না
0: থাকে না
1: শোন মিথ্যা সূচনা বলেগো আসলে থাহানাই না পায়েকো কুরা লেখনি বা ফৈলাউনে কুরাও আমি ভ্রামক সূচনা বলেগো যে জানি জানি নিয়ত বস আপনি ফাইদা বা স্বার্থকা লাগে ফৈলাউনে গলত সূচনা এস্তা সূচনালে সমাজলাই ভ্রমিত বনাউছ খণ্ডিত পার্ছ নিরাশা বড়াউছ র অবিশ্বাস পনি সৃজনা গর্ছ
0: ওহো त्यसो भए त यस्ता सूचना सेयर लाइक गर्नु हुँदैन रहेछ है
1: होइन भ्रामक र मिथ्या सूचना सेयर तथा कमेन्ट केही पनि गर्नु हुँदैन सेयर गर्ने भए पनि त्यो सूचना सत्य तथ्य हो कि होइन यकिन गर्नुपर्छ त्यसको स्रोत थाहा पाउनुपर्छ मिति र फोटो मिल्छ कि मिल्दैन राम्रोसँग हेर्नुपर्छ आधिकारिक माध्यम हो कि होइन त्यो पनि थाहा पाएर मात्रै सेयर र कमेन्ट गर्नुपर्छ बुझ्यौ
2: भ्रामक सूचना नफैलाऊ जिम्मेवार नागरिक बनाऊ
3: आधिकारिक स्रोतबाट प्राप्त सूचनालाई मात्र विश्वास गराऊ
2: नेपाली सरकार विज्ञापन
1: खै जन्मदाता दिनुहोस् त
4: जन्मदर्ता गरेको छैन नि म्याडम
1: ल जन्मदर्ता नभए त विद्यालय भर्ना हुँदैन नि
4: मलाई त थाहा नै थिएन म्याडम
1: बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी बनाउन ब्याङ्कमा खाता खोल्न अनि राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा पाउन जन्मदर्ता अनिवार्य हुन्छ
4: पहिला कसैले भनेन
5: त्यति मात्रै हो र दाई जन्मेको 35 दिनभित्र स्थायी ठेगाना वा जन्मेको ठाउँको वडा कार्यालयमा जन्म दर्ता गराउनुपर्छ
2: जन्म र मृत्युदर्ता परिवारको मुख्य व्यक्ति वा 18 वर्ष उमेर पुगेका घरको सदस्यले वडा कार्यालयमा गराउनुपर्छ
5: विवाहको सूचना पति र पत्नी दुवैजनाले दिनुपर्छ सम्बन्ध विच्छेदको सूचना अदालतको निर्णय सहित पति वा पत्नीले दिन सक्छन्
2: जन्म मृत्यु बसाई सराई विवाह एवं सम्बन्ध विच्छेदका घटना बेलैमा दर्ता गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो
3: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: अपराह्न को 4 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु।

0: प्रोलू एफ एम 101.2 MHz उज्ज्वल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक को साथमा
0: न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्कुम नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु।

सकल पत्र को आधार में यातायात कार्यालय ने जारी दर्ता नंबर स्कैन करी सवारी दर्ता प्रमाण पत्र को प्रतिलिपि जारी करोभी स्थानीय तह में दर्ता भूमिका वा यातायात व्यवस्था कार्यालय में दर्ता भई स्थानीय तह में हस्तांतरण भूमिका ई रिक्शा को सवारी दर्ता अभिलेख किताब स्थानीय तह में जेएमजी को आंदोलन को क्रम में जली नष्ट अवस्था में स्थानीय तह में दर्ता भूमिका एवं कर चुक्ता प्रमाण को आधार में सकल सवारी दर्ता प्रमाण पत्र बिलभूत समेत राखी सरुआ दर्ता सरह दर्ता सेवाग्राही नागरिकता को फोटोकपी दुई प्रति हालसाल खींच फोटो सवारी दर्ता प्रमाण पत्र को फोटोकपी सवारी साधन को इंजिन नंबर र चेसिस नंबर देखने गरी को फोटो सवारी साधन को पूर्ण भाग देखने गरी को फोटो संलग्न राख्नु पर्ने छ। यदि स्थानीय तह में सवारी कर तथा नवीकरण समेत गरिएको भएमा उक्त शीर्षक में थप कर लाग्ने छैन।

0: केडब्ल्यूआर नेपाल नेसो जो मार्गदर्शन रेडियोला प्रसिद्धिले जय मसी। जी क्यों मोबाइल दापी सिंटिंग दुपी परला सन निजी की तेंदो प्यामो के निदिनी यामो के निद्वाबीन
1: नशे नुकसान देखियो लाम सभी के लिए तमाम देने से होता हूँ आलिंग आज नुकसान देखिए परलाम कौन जगी सुन लुकलाम बीमार करते से देखियो लाम वाणिक सों नशे आलिंग कौन जगी सुन दे सही कौन जगी जाओ मो परी खुशियां देव नरी निमित्त हैं घन लागा जिसनां तमाम साता नुमो बलमा पर जीवी खुशियां देव के लिए की सही कौन जगी निन्ना मो पर जीवी तमाम जगह सही कौन जगी मो पर सी जिसे ही कौन जगी मो पर जी मोती की चेंगा अतर तंगा दिन नवाई जिसी दुष्ट चीनी दिन वाई ये न्याय जाजना जुन्ना को सही कौन जो खराजी मिंचना जूसी खराज जगम दुपुक्षी खराजी नासन जाजना दोगे दिगमलिंगा दुपुक्षी नियंगा आरिंग निया निये जंगी समनंग देजी निये मतकबा लागते वाला शाह जानंग देजी सुक्यानी निये जी निया खोया मतकबते वाला शाह वादिंग में नियंगा परचला फिर मार्किसा तमलो मेरकबने टूटोल नंग देजी चिरसी जलखम मोलाम स्वांति नरीरां खराजराइन आमें दुक्याने दासा बंगीलाम भाईबल लोगों पर लगी सही कौन जगह मो पड़े जीवे तमाम मो पड़े कहाँ इंसुल कर लाइन चिले ऐसी की दाग बुलाम मो पड़ जीवे लाम ये मिले इंसीसिंग तमाम सही कौन जगह मो पड़ना चाहना हो दुकान बाते चले लाम कुतु कुतु घक्षे तमाम जिनका कहाँ इंसीने सुलुप लागा जीवे नहीं जोगन जे दबी सही कौन जगह मो पड़ना चाहे चोइने जोगन की थोड़ा दाग दे रेजन जे पर बीजी मुलाम सुख्याने मो पर दमा तमने जोर से ने हाँ कोई की थोड़ा ले मैं जाने निमा चों बोझे धक्के मो पर लाम जिम्मा पर मांग सिनां मांग हक बचीवे उतना लड़ाई की चेंज कीवे जिम्मा पर होता भूमि जी तमाम सही कौन जगह मो पर की कर लाम धक्के ना समझे घासे की दगा जनी तन ये जीवे धक्के की लाभ से लोग थर्मी की ताम कहाँ इंसी सिंग ऐसी की धक बलाम कोई की लामा ती एजी गंगा शुरू की तम नलाम जिम्मा पर की कर ला सुन ना सुन ते ये तेल की सीधा सुन ये चोई कौन जो युवा ने की फरेलो आमते वाला मो पर की लाम में मिनट दोगे निवास मो पर की लाम में दिन नंगे जी जीतान मुगा चूजी की चीज बनी जीवे जीतो को मो पर की योगता इन भाकुले हो दिए खर्च है मोती की चेप चुबलाम नेमा जने सेम लाम जीबलाम ग्रीन है यह दाउपी की मलो सही कौन जगी मो पर तमा गाड़ी गुरी की नार्थोला थोनी हुआ है मो पर की कोला थर में की खर्च है ताम खर्च है जीवते जीती जोले में लेनी आने दाउपु कहाँ की हुआ सीन सिर्फ ताम बनी लाम की ताम दो कुदुग में इंजुल खड़ा जी रेडियो तमा चुकरे सितां दिवां मैं जी क्या ताम दिवां मैं मैं जनी नहीं हो जू जो उन्तुक जी जी चुनाव तमाना लोनी जो को सकला खड़ा जी उन तमा कंप्यूटर निन्न तमाम तम दो तेरी हो जू मैं चुनाव गोइंग जी ताम खड़ाई निन्न हो जू जिनाना खड़ा जी सुरक्षा ताम दिवां हो जू तमा खड़ा जी जुला निन्न हो है तमा तेरे की ताम भार से चुनी हो है तमा जिम्मा पसंग चुकरे इन जो बना कौन जाके दाखिल मिला ताम चाहना जुड़े कोई की खोरा सुन जाएंगे भाई बहन से

साझ पर्दा घर छोड़ी गाँव घुम जानून बाघ भालू बैरा हाथी चितुआ पसे पछी धन जन को क्षति हुन्छ चुपचाप बसे।